अस्सलाम वालेकुम सामीम, सदाए तुर्किया से मुखातिब है, आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 8 अगस्त प्रोस हफ्ता है। इस वक्त अंकरा के मकामी वक्त के मुताबिक सुपहर की 3, पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक शाम के 5, भारत के वक्त के मुताबिक शाम के 5:30 और बांग्लादेश के वक्त के मुताबिक शाम के 6 बजे हैं। सामीन आप नशरियात को शॉर्ट वेव 16 मीटर बैंड 17,580 किलो हर्ट्ज़ के अलावा क्षेत्रीय ईस्ट फॉर वेस्ट में हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं। आज मेरे प्रोग्राम में अलग तरतीब खबरें और सिलसिलेवार प्रोग्राम हाथ देने वाले हाथ की कहानी और फीचर पेश किए जाएंगे। हमारा प्रोग्राम हस्ब मामूल 1 घंटे तक जारी रहेगा। आज आपके मेज़बान हैं इमरान ओपन।

के साथ तावन की तैयार है। तुर्किया 7 दिसंबर 2023 को जारी करता दोस्ताना तल्लुकात तो छह पड़ोसी पन के बारे में एथेंस इलामे की तरह में मसाइल के हल के लिए बैन अवी कवानीन इंसाफ और अच्छे हमसाय तल्लुकात की बुनियाद पर मुखलिसाना और जामे नुकता नजर अपनाने की जरूरत के बारे में अपने मौकफ को बरकरार रखे हुए हैं। पाकिस्तान वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ ने अपने सोशल मीडिया पर तुर्की अफसोदर पाकिस्तान के दरमियान दस्तखत शुदा मुश्तरका दिफाई मुआहदे के बारे में एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा, मुझे सदर एर्दोगान सऊदी वली अहद शहजादा बिन सलमान के साथ मिल मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदा तय करने पर फख्र है और इस बात पर जोर दिया कि तीनों बरदर ममालक ईमान, दोस्ती, अमन और सलामती के हवाले से मुश्तरका अज़म के साथ मुत्तहिद हैं। शहबाज़ शरीफ ने अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा, मुकद्दस मकाम पर दस्तखत होने वाला ये तारीखी मुआहदा आने वाली नस्लों के लिए अमन के लिए एक ढाल बना रहे और तीनों भाई ममालक के साथ साथ उम्मत को भी फलाह बहबूद पहुंचाए। तुर्किया सऊदी अरब पाकिस्तान जुम्मे को सऊदी अरब में मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत कर दिए थे। ये मुआहदा हर किस्म की जारहियत के खिलाफ इज्तमाई मुजामत को मजबूत बनाने के मकसद के तहत तय पाया है। उसमें कहा गया है कि अगर तीनों में से किसी एक मुल्क के खिलाफ कोई मुसलमान हमला किया जाता है तो उसे तमाम ममालक के खिलाफ हमला तस्वर किया जाएगा। इस्लामी तावन तंजीम ने जुम्मे को सऊदी अरब, तुर्किया, पाकिस्तान के दरमियान मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत का खैर मकदम किया। तंजीम के एक बयान में कहा गया है कि वाईसी के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा ने इस मुआहदे के लिए अपनी कौवी कदरदानी हमायत का इजहार किया। से तीनों ममालक के इलाकई बैन अवी तावन को मजबूत करने के अज़म की अक्कासी करते हुए एक अहम स्ट्रेटेजिक कदम करार दिया है। ताहा ने कहा, यह मुआहदा इलाके और मुस्लिम दुनिया में सलामती इस्तेहकाम की हमायत के लिए एक बुनियादी स्तून है। उन्होंने मजीद कहा, बढ़ते हुए सलामती के चैलेंजेस को हल करने और आईसी रुकन मुल्क के दरमियान यकजहती तामीरी शराकत दारी को मजबूत बनाने के लिए मुश्तरका अज़म की अक्कासी करता है। ओआईसी के सरबराह ने तीनों मुल्क के इन कोशों क़यादत की भी तारीफ की जो बिलाखिर इस तारीख मुआहदे के दस्तखत पर मुंतज हुई। उन्होंने उम्मीद जाहिर की मुआहदा खित्ते वैसी बैन अवी बरदरी में अमन खुशहाली के हसूल में मामिन साबित होगा। जुम्मे को मक्का में मकदार सैफरी की सरप्राइज इजलास में तुर्किया, सऊदी अरब, पाकिस्तान ने मुश्तरका दिफाई मुआहदा तय किया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी चेयरमैन ऑफ जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डेन कीन ने निजी तौर पर ट्रंप जामे के सीनियर अहदेदारों से ईरान के खिलाफ अमरीकी जंग की शिद्दत को कम करने का कोई रास्ता तलाश करने की दरख्वास्त की है क्योंकि दस्तयाब अस्करी इख्तियार महदूद नतज दे सकते हैं, वसी तर जवाबी कार्रवाई को जन्म दे सकते हैं। रिपोर्ट में मुसाकरा से आगाह तीन जराये के हवाले से बताया गया कि कीन ने सीआईए डायरेक्टर जॉन रेड कलफ, स्टेट सेक्रेटरी मार्को रोबियो, नायब सदर जेडी विंस को अपनी तशवीश से आगाही कराई। रिपोर्ट के मुताबिक कीन और दीगर अहदेदार समझते हैं कि सिर्फ फजाई कौतों के जरिए तेहरान को अमरीकी मुतालबा कबूल कराने का इम्कान मादूम है। हालांकि सदर डोनाल्ड ट्रंप अब भी बड़ी मुदाखलत से गुरेज करने को तरजीह दे रहे हैं। बताया गया है कि कीन और दीगर सीनियर अहदेदार जुलाई के आखिर में तजवीज करता तसईद के हक में शक को शुबा करते थे। जज्बी तौर पर इस खदशे की बिना पर कि ईरान अमरीकी इंतहादियों इलाके तवनाई के बुनियादी ढांचे के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने बिलाखिर इस ऑपरेशन को मुलतवी कर दिया जब खलीजी शराकत मुमकिन हमलों पर अपनी तशवीश का इजहार किया। रिपोर्ट ने अमरीकी हथियारों के जहर में कमी के बढ़ते हुए खदशात की भी निशानदेही की जिनमें फजाई दिफा के इंटरसेप्टर्स, दीगर दुरुस्त निशानाबाज जंगी साजो सामान शामिल हैं। यह वाशिंगटन की तवील मुद्दत जंगी सलाहियत को महदूद कर सकते हैं। सीएनएन ने कहा है कि कीन ने ट्रंप को फौजी खतरात के बारे में मुतनबे किया है और साथ ही इस बात पर जोर दिया है कि अगर हुक्म दिया गया तो अमरीकी अफवाज ईरान को काफी हद तक नुकसान पहुंचा सकती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इंतजामी के अहदेदार अब ऐसे नतीजे की तलाश में जिससे ट्रंप बतौर सियासी कामयाबी पेश कर सकें और साथ ही सफारतकारी के लिए गुंजाइश बाकी रहे जिनमें मुमकिन तौर पर हुरमुस को दोबारा खोलने का मुआहदा भी शामिल है। एक इलाकाई फौजी एहलकार ने हफ्ते को कहा है कि रूसी हमलों ने यूक्रेन के दारकूमत के शुमाल मशरक में वाक़ एक जिला में एक 25 में 3 अफराद को हलाक कर दिया है। कीव ने शुमाल से आने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों का इंतबाह भी जारी किया है। मास्को ने हाल ही महीनों में यूक्रेन के दारकूमत पर हमलों में खातिर खा इजाफा कर दिया। आम तौर पर वो मुख्तसर हमलों में रोकना मुश्किल होने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों की कसी फायरिंग करता है। इलाके फौजामे के सरप्राह तिमोर तेकाचेंको ने टेलीग्राम पर लिखा है कि कीव के शुमाल मशरक में वाकया बरवारी जिला में

0: ये खबरें सदाए तुर्किये की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं।
1: यूक्रेन के रहमान ज़ेलेंस्की सर्बिया का एक तारीखी दौरा कर रहे हैं। लुबनानी सदर जोसेफ ओर्निका सर्दी तनाजा कैदियों के तबादले के हवाले से रूम इसराइल के साथ मुदाहरात मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त हुई है। मुज़ाकरात में जंग बंदी मकानात के मसमारी मुजस्सा पायलट एरियाज पर भी बात हुई। ओर्निका अमरीका बकाया मसाइल के हल के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। ये मुज़ाकरात जून में फ्रेमवर्क माहदे की पैरवी करते हैं, जिसमें इसराइल फौज के हमलावर इनखला खाली करदा इलाकों में लुबनानी फौज की तैनात का तस्वर पेश किया गया था। सदों कैदियों पर इसराइल के साथ मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त हुई है। मुज़ाकरात जून में फ्रेमवर्क माहदे की पैरवी करते हैं, जिसमें इसराइल फौज के इनखला खाली किए गए इलाकों में लुबनानी फौज की तैनाती का तस्वर पेश किया गया था। अमरीका ने कोलंबिया को $1 बिलियन की इमदाद भेजने के इरादे का ऐलान किया है। ट्रंप इंजामी तैम बाजू के सदे बेला रोटरी लास पेरेला के इफ्ताह के बाद कोलंबिया को $1 बिलियन की सिक्योरिटी इमदाद फ्राहम करने के मंसूबे का ऐलान किया। वाशिंगटन ने कहा यह पैकेज कोलंबिया की सिक्योरिटी फोर्सेस को तकवीत देगा, फौजी तावन को गहराई देगा। लास पेरेला, जिसे द टाइगर का लकब दिया जाता है, ने नशा और दहशतगर्दी को मुसलसल शिकस्त देने का अज़्म किया और कहा कि मुसलह ग्रोहों के साथ बातचीत का ऑप्शन मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। जापान के क्यूडो न्यूज ने हफ्ते को रिपोर्ट किया है, जापानी वजारत दफा ने माली साल 2027 के लिए रिकॉर्ड $56 बिलियन के दफाई खराजात की दरख्वास्त करने का मंसूबा तैयार किया है, क्योंकि टोक्यो इलाके सिक्योरिटी खदशात के दरमियान अपनी असली तैयारी में वसत ला रहा है। यह बजट की दरख्वास्त अगस्त के आखिर तक फाइनेंस वजारत को जमा कराई जाएगी और साल के आखिर में होने वाली बातचीत के दौरान यह रकम मजीद बढ़ सकती है। एक सीनियर सरकारी एहलकार ने कहा मजमू दिफाई खराजात बिल आखिर तकरीबन $63 बिलियन तक पहुंच सकते हैं। बजट जापान की सेल्फ डिफेंस फोर्सेस को इन चीजों के लिए तैयार करने पर तवज्जो देगा जिन्हें हुकाम नई नोयत का जंगी तर्ज कहते हैं, जिनमें ड्रोन मसनू जहन का बढ़ता हुआ इस्तेमाल शामिल है। जापान इंटरसेप्टर्स ड्रोन मसनू जहन से मदद याफ्ता कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम तवील फारसे तक मार करने वाले मिजाइल खुफिया डेटा के लिए क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और हाई पावर लेजर माइक्रोवेव हथियारों में समायकारी करने की मनसूबाबंदी कर रहा है। ये मनसूबाबंदी अखराज जापान के 5 साल दफाई मजबूती प्रोग्राम का हिस्सा है, जिसके तहत माली साल 2023-2027 के लिए $270 बिलियन मुख्तस किए गए हैं। टोक्यो ने 2022 में नई कौमी सलामती हिकमतमी अपनाने के बाद से दिफाई खराजात में मुसलसल इजाफा किया है और चीन, शुमाली कोरिया, रूस से होने वाले सिक्योरिटी खतरात को इसकी वजह करार दिया गया है। तजिया करों का ख्याल है जापान की बढ़ती हुई दिफाई सलाहितें मशरकी एशिया में असलाह दौड़ में इजाफे का बायस बन सकती हैं, जबकि चीन टोक्यो की अस्करी तरक्की पर नुकताचीनी की है। इसके साथ ही तुर्किया से खबरें खत्म हुई।

हैरतअंगेज कारनामा यह था कि जिस दौर में यूरोप में ज़हनी मरीजों को शैतान ज़दा करार देकर जंजीरों में जकड़ दिया जाता था या जिंदा जला दिया जाता था, इसी दौर में इन दारुशफाओं में मौसीकी, बहते पानी की आवाज़ और फूलों की खुशबू से ज़हनी बीमारियों का इलाज किया जाता था। अदिरने में वाक़िया सुल्तान बायजीद सानी दारुशफा इस कामयाबी की आला तरीन मिसाल है। यहाँ तबीब हर बीमारी के लिए मौसीकी के मखसूस मुकाम यानी मखसूस धुन तजवीज़ करते थे। मिसाल के तौर पर बेख्वाबी के मरीजों के लिए मुकाम रास्त, ज़हनी इंतशार के शिकार अफराद के लिए मुकाम रिहावी, जबकि तेज़ धड़कने कलब वालों के लिए मुकाम उशाक बतौर इलाज तजवीज़ किया जाता था। वक्फनामे की हिदायत के मुताबिक दारुशफा के बागात में दुनिया के खुशबूदार तरीन फूल उगाए जाते थे ताकि मरीज़ फितरत, पानी और फ़न के शफा बख्श कुव्वत से लुत्फ़ंदोज़ हो सकें। इस मुनफरद निज़ाम इलाज का जिक्र औलिया चेलेबी ने अपनी तसनीफ़ सियाहतनामा में और मुतअद्दिद मग़रिबी सयाहों ने अपनी यादाश्तों में हैरत और तहसीन के साथ किया है। ये औकाफ इंसान को सिर्फ एक हयातियाती वजूद नहीं बल्कि रूह रखने वाली एक मुकद्दस और मुकम्मल हस्ती समझते थे और इसी सोच के ज़रिए उन्होंने जदीद इल्म नफ्सियात की बुनियादें सदियों पहले रख दी थीं। आज हमारे जदीद तबी जामियात और अस्पतालों की बुनियादों में इन्हीं दारुशफाओं की रिवायत शामिल है। ख़ास की सुल्तान दारुशफा से लेकर आतिक वालिदा दारुशफा, कैसरी के गौहर नसीबा दारुशफा से सिफा शिफाया तक ये इदारे हमें सिर्फ इलाज का इल्म ही नहीं बल्कि इंसानी वक़ार और एहतराम का अजीम वर्सा भी दे गए हैं। इन इदारों से फारगुल तहसील होने वाले तबीब सिर्फ ज़ख्मों पर मरहम रखने वाले मालिज नहीं थे बल्कि वो ऐसे अहले इल्म भी थे जिन्होंने अपनी तसनीफात और तहकीकात से दुनिया को रोशनी बख्शी और साइंस व तिब की तारीख पर अनमिट नकूश छोड़े। दारुशफा के औकाफ दुनिया के कदीम तरीन मुनज़्ज़म तालीमी निज़ामों में से एक के अमीन भी थे। यहाँ ज़ेर तरबियत तबीब उस्ताद और शागिर्द की रवायत के तहत मुश्किल तरीन जर्राही के मराहल का मुशाहिदा करते और वक्फ की अजीम लाइब्रेरियों में महफूज नायाब किताबों से अपने नजरी इल्म को मज़ीद मजबूत बनाते थे। तालीम मुकम्मल करने वाला हर तबीब सिर्फ एक माहिर तबीब नहीं बल्कि इखलाक, रहमदली और खिदमत खल्क का पैकर बनकर माशरे में कदम रखता था। वक्फ दरअसल रहमत का दूसरा नाम है और दारुशफा इस रहमत का वो हसीन रूप है जिसे इल्म ने ताज पहनाया। आज जब हम पत्थरों से बनी इन कदीम इमारतों के दरवाज़ों से गुजरते हैं तो दर हकीकत हम एक ऐसे अहद शफा के गवाह बनते हैं जिसने इंसानियत को नई ज़िंदगी बख्शी। गुज़श्ता ज़मानों के इन अजीम तबीबों को सलाम पेश करते और दुआ करते हैं कि ये तारीख़ दौर हाज़र के मुआलजीन के लिए हमेशा बायस इल्हाम बनी रहे। समीन अब हम इस मुकद्दस मुकाम से तो रुखसत हो रहे हैं कि जहाँ शिफा को वक्फ करार दिया गया था और जहाँ तिब की हकीकी रूह आबाद थी, लेकिन वक्फ की ये वसी दुनिया हमारी मुंतजिर है और हमें नई दरियाफ्तों की तरफ बुला रही है। अपने अगले सफर में हम ये देखेंगे कि पानी को कैसे वक्फ किया गया और पत्थर ने किस तरह ज़िंदगी को नई ज़िंदगी अता की। पानी की मधुर आवाज़ की संगत में अगली मुलाकात की उम्मीद के साथ रहमत और शिफा की इस राह पर हमारे साथ रहिए। याद रखिए, जब एक हाथ आगे बढ़ता है तो एक ज़िंदगी बदल जाती है और कहानी मुकम्मल हो जाती है। देने वाले हाथ की कहानी में अगले हफ्ते फिर मुलाकात की उम्मीद के साथ अपनी मेज़बान मिसबा शाहीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। देने वाले हाथ की कहानी।

आपका मोबाइल फोन, आपकी इलेक्ट्रिक गाड़ी, चक्कर काटने वाले विंड टर्बाइन्स, इन सब के मुश्तरक इसार नायाब जमीनी अनासर हैं। तुर्किया इस मैदान में वर्ल्ड लीग में शामिल है, तो इस हवाले से हमारी इस्तेदाद क्या है? हाई टेक्नोलॉजी की नायाब जरूरियात, तो आइए शुरू करते हैं।

प्रोफेसर कुर्शन मुफ्त खत्म इम्कान की तरफ इशारा करते हुए अपनी बातचीत को नुकता पजीर किया है। हमारे मुल्क में एक मुमकिन नायाब जमीनी अंसर के जहायर में से एक स्पार्टा चनाकल में है। मलातिया खुलंजा के इलाके में मौजूद नायाब जमीनी अंसर की मदनियात में लेंथियम, सीरियम, प्रोसियोडीमियम, न्यूडीमियम, एट्रियम और थोरियम अनासर शामिल है। यह वाजह है कि तुर्किया नायाब जमीनी नासर में नुमाया सतह की इस्तेदाद का हामिल है। वो इस मैदान में आलमी लीग में अपनी जगह बनाने की तैयारी में है। हमारी अगली पॉडकास्ट में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।